0: I had a very long day. बहुत थक चुकी हूँ मैं.
1: चांदना कितने है?
0: बहुत ज्यादा आवाज कर रही है सीखी है ना, तब मैं लाती हूँ.
1: बाड़ी में बात कर.

0: उम्मीद करते हैं कि अज का प्रोग्राम थानू वधिया लग्या होगा, कुछ गल्लां थानू चंगियां लग्गियां होणगियां, जे कुछ नहीं भी चंगा लग्या तां उहदे लई असीं तुहाडे तों माफ़ी मंगदे हाँ। तो इस वादे नाल तुहाडे तों इजाज़त लैंदे हां कि अगले सोमवार फिर सवेरे 10 बजे तुहानू इत्थे ही असीं मिलांगे कुछ गल्लां ते कुछ गीत दे नाल। तद तक लई सुनदे रहो सांझी आवाज़ रेडियो दा चैनल, ते हसदे वसदे ते खुश रहो।
1: हाँ जी, मेरे वालों भी बहुत प्यार भरी निक्की सत श्री अकाल, ते मैं तुहानू मिलदी हाँ थर्सडे नो सवेरे 8 बजे तो लैके 10 बजे तक 88.9 विन FM तो प्रोग्राम लैके। सत श्री अकाल मेलबर्न।